0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: इको ही बार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी दा फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई दा फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल दा फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगदी है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस कग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल। कभी ये सिख है
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमै सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहिब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लेके मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है, उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना किहड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे, सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी जाए किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने, उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है, क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करेंगे प्यार सत्कार।

0: सुपती नित मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थ ये ने कि एक तो बस यही सारा दिन मन के अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च प्रवृत्त होइए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उन्हां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा नाउ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद तार भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद तार जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगों के ताई पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया के अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देंगे।
0: घर घर बेचे बनिए बहुत शूद्र बेचते पुत्र।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोगों नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे किहड़ा मेहनत करे किहड़ा कम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जड्डा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया, और कुकर्म इन्ने करिया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह की दुनिया हौली हौली बन जाएगी।
0: आप नरक अवरन नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोड़ भी नहीं ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जाएगी।
0: लोकन तो बंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: बंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने ओह संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां

0: महाराज कहिंदे भाई गुरबख्श सिंह जी ये जिहड़ा कलनामा ना कलना कलयुग नाल साडे वचन बिलास होए ने ये असीं तुहानू लिख के दिंदे हां।
1: सतगुर आप सुनाया सच सुनामो तोए।
0: अपने जिहड़े लिखारी ने उहनां दे साहिब सिंह जी उहनां नूं गुरबख्श सिंह भाई गुरबख्श सिंह राम कुमार जी कहण लगे, कहिंदे बिल्कुल तैनूं मैं सच गल सुणाउंदा हां, इहदे विच कोई झूठी गल ना आखियो भी ये झूठी गल है, बिल्कुल गुरु ने मैनू यह सारा आप दसिया है।
1: कल युग कहता आदम ब्रह्मा जनता कीन।
0: कल युग कहन लग्या महाराज शुरू दे विच जदों ब्रह्मा जी ने जनता हुंदा जन्म देना, जदों सानू पैदा कीता चारां भरावां नू बनाया।
1: कहे सकल हम है अधिक हंकारी लख लीन।
0: सो ये सारे जाने हंकारी, असी सारे आखिए भी असी वड्डे हैं, तां ब्रह्मा जी ने सानू हंकारी जाणिया।
1: तब ब्रह्मा समझाए हो तुमरा न्याय समाज।
0: हां ब्रह्मा जी ने कहा हे बेटियो तुहाडा जद राज समाज होवेगा तदों न्याय करना, ते तुसी किवें करोगे मैनू दसो।
1: कह समाद कर मोनोए चितवा पुरख जुराज।
0: ब्रह्मा जी आओ कह के समाधि ला के बैठ गए भी दसो तुसी किवें दा न्याय करया करोगे अपने राज दे विच। इस तरह जदों कह के बैठ गए युवराज जिहड़ा वड्डा सी सतयुग पहला वो बोलिया,
1: एक खरा दूआ हुआ तीजा चौथा सोन।
0: कहने पहला सतयुग खड़ा हो गया उठ के, त्रेता द्वापर कलयुग चारे जाने असी उठ के खड़े हो गए।
1: प्रथम जन्म को सौंप कर नीत पढ़ाई गुण।
0: सो कहने जेड़ा है ना पहला जेड़ा जन्म भाव पिछला जितना भी कीता हुआ कर्म है उस कर्म दे मुताबक मैं सारा कुछ दसिया कि केड़ी मेरी ईती होवेगी। पहले जम्मे भाव सतयुग नूं राज सौंप के पढ़ाई हुई नीति पर जिहड़ी विचार रंभी है विचारना कीती है वह कलयुग ने सुनाई है।
1: बिद बूजो क्या वर्तड़े पुत्र करेगा जाए।
0: सो उस वक्त बिद विधाता ब्रह्मा ने बूजो पुछया क्या वर्तनी पुत्र करेगा जाए। सतयुग नूं कहिंदे पुत्र तू जदों राज करेगा दुनिया ते तेरे समय विच की वर्तारा वर्तेगा।
1: सोहिया तो मोए टिग हुक्म राज में दाए।
0: वो मैनूं दस के जा भी तू अपने राज दे विच केड़े केड़े लोकां तो कर्म कराएगा, तेरा न्याय की होवेगा जो हुक्म राज विच देवेगा।
1: सत बोलियो तब पुरख ने देश देश दियो बांट।
0: सतयुग बोलिया फिर कहन लग्या जदों कोई बंदा एक बंदा कोई माड़ा काम करेगा कोई कुकर्म करेगा मेरे समय विच वो पाप एक बंदे नूं नहीं लगेगा, दो नूं नहीं लगेगा, कोल नूं नहीं लगेगा, सो एक जिवें कह लो सूबा है उहनूं नहीं लगेगा। एक बंदा जे गुनाह करेगा पूरा हिंदुस्तान नूं मैं दुख देंगा, भई एक बंदे की गलती करके सारयां नूं दुख मिलिया करेगा। जिवें इहदे च तां साखी नहीं आई वह बेणू नामे एक राजा होया सतयुग दे विच, उदों थोड़ी जी गिणती घट हुंदी पापियां दी, सतयुग हुंदे एक अद्धा परसेंट ही बंदे इहजे गंदे सीगे, कलयुग विच तां इहजे बंदे 90-99% ही होए बैठे आ। सो कहिंदे बेणू नामे राजे ने लड़कियां पाणी भर रहियां सी खूह दे उत्ते तो अच्छी लड़की देख के चुक के लै गया माड़ा कर्म कर दिता। तां सतयुग ने की न्याय किया 10,000 वरा पूरे हिंदुस्तान दे उत्ते मिट्टी बरसी, मिट्टी उत्तों डिगदी रहिंदी सी हर वक्त रेता पैंदा रहिंदा, दुनिया नूं परेशानी बहुत उठाउणी पई क्यों एक बंदा गलती करेगा तां सारे मुल्क नूं सजा मिलेगी। सतयुग ने यह कहा है
1: जिसे देश ता का लिखो पाप पुन की सांट।
0: सो कहिंदे फिर इस तरीके नाल मैं जिहड़ा कर्म करांगा ना वो तुसीं इउं जाण लो कि मैं कर्म दी सजा किवें देवांगा। तब सतगुर बोलिया

0: कहते पुत्र एक गल का ख्याल रखी बाला ना सिर चढ़ जी कि मैं ही मेरा राज है। जिन्ना ने ब्रह्म दे आसरे हो के तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। जिन्ना ने यह कर्म पकड़ लिया ना जेड़े गुरु वाले होणगे जेड़े सही गुरसिख होणगे जेड़े धर्मात्मा पुरश होणगे उत्थे भुल के ना हथ पाली किते ओह तैनू कर देणगे पुठा। उही बचन आ गया ना बाबा जी वाला कह रहे इस करके उन्हां तो डरी उन्हां दे जोड़े जाड़े झाड़ाया करी प्रसाद भी लै लिया कर जाके इस करके उत्थों थोड़ा जा भै करी। ते बाकी जेड़े लोग ने कलयुग दे अंदर पखंडी लोग शराबी कबाबी एह जे पुठे कम्मा वाले इन्हां नूं जिन्ना मर्जी मारी मैं तैनू कुछ नहीं कहिंदा।
1: अपर सकल तज आसरो एक नाम को प्रेम
0: कहिंदे होर सारा आसरा छड्ड देना कलयुग दे विच

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

0: किसी का प्रश्न है। सारी संगत ने हाथ जोड़ के इस तरह गुरां दे अगे बेनती की है।
1: साचे पातशाह कहिए चतर वरण मुंडत ही लईए।
0: महाराज जी ये कृपा करके सानू दसो ये जे चारे वर्ण ने सारे खत्री ब्राह्मण सूद वै साधक होर भी बड़े बड़े लोग ने ये सारे जने मुन ही ने मुंडत भाव हरेक ने केस दाढ़ी कट के बिल्कुल ही सफाया।

0: सगल इष्टा ज्ञान के भगत राज की मंड।
1: हुण जिहड़ी ज्ञान होना ना बंदे नूं इह ईश्वरता प्राप्त हुंदी नाल ते भगती दे नाल जीवन नूं प्रताप मिलदा है।
0: युत विकार पर जा सरल विपुल दुख कर्म कंड।
1: हुण जिहड़ी विकारां दे संयुक्त सारी प्रजा विकारां दी भरी पई है इह बहुत ज्यादे दुख प्राप्त हुंदा है क्योंकि कर्म कांड ही करते ने सारे लोग। भगती करनी होंगी है भी इतने बहना पैना घंटा दो घंटे तीन घंटे ते जिहड़ियां गल हैगी आ दूसरी कर्म कांड दी उह इह आ गल भई मत्था टेकिया ते दौड़ गए मैं देख कराया मैं सेहरा चढ़ाया मैं इस तरह कराया उहनू पुछे तू पंज मिंट उत्थे बह के वाहिगुरु वाहिगुरु कीता जां कीर्तन सुनिया कोई कथा कहना इन्ना टाइम नहीं है साडे कोले देर करा दी थोड़ी है उथे। इस करके संसार दे लोग जिहड़े कर्म कांड जे करदे ने दिखावे दे कर्म करदे ने जिहड़ा सौखा जिहा काम है जिहड़ा दो मिंट च हो जाए उह काम करदे ने जिहड़ा भगती है मन मार के करनी पैंदी है उह कर्म नूं लोग छड़ दिंदे ने।
0: तीर्थ जप तप दखण नेम संयम अरदान।
1: तीर्थ नाल इशनान जप करना तप करना दक्षिणा देनी नेम करने संयम करने होर सारे जिहड़े कर्म ने।
0: वर्णाश्रम ए वेद रचियो विदाते थान।
1: ब्रह्मा जी ने सारा कुछ रचिया वर्णाश्रम के मुताबिक सारिया चीजां वेदां दे विच रचियां होईयां।
0: मन तो मन इंद्रन इंद्र मतमो मत अनुराग।
1: ये बड़ी डूंगी चीज है विधान दी है कि मन नू मन मन असल विच मन की आत्मा ही है। बुद्धि नू शक्ति कौन दिंदा वो भी आत्मा ही दिंदी है। इंद्रिया नू कौन ताकत दिंदा आत्मा ही दिंदी है। इस गल नू जे कोई बंदा समझ लवे कि सारिया नालों पहला जिहड़ा साडियां इंद्रियां ने इंद्रिया नू चलाउण वाला मन है। मन नू सत्ता कौन दिंदा जिहड़ा ये बुद्धि है बुद्धि नू सत्ता कौन दिंदा आत्मा। यह दुनिया के लोग यह नहीं समझते भी आत्मा भी कोई चीज है। आत्मा तो लोग भुल जाते हैं आत्मा तो पिछे प्रकाश करती है। ये लोग यह कहते ने मेरी बड़ी बुद्धि है इनू बुद्ध भरम कहते ने यह मेरी बड़ी बुद्धि है मेरा मन इउं कहिंदा है मैं इउं कर देंगा। आत्मा नू संसार भुलिया बैठा
0: ईश जीव की भेदता मूर्ख ही रह लाग।
1: संसार दे लोक ना मूर्ख ने क्योंकि ए जीव ते ईश्वर दी एकता नू समझ नहीं सके ए बुद्धि तक ही सीमित रह जांदे हन।
0: साहिब सिंह तू जान अब हमें द्वैत न दिस।
1: अपने लिखारी नू बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कुमार कहन लगे हे भाई साहिब सिंह सुन हुण सानू किते कोई द्वैष नजर नहीं आउंदी सारे ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आउंदा है।
0: सतगुर दर्शन सफल पा पाए रूप ही सारस।
1: सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह का जिहड़ा दर्शन होया सीगा ना वो दर्शन करके साडी जिहड़ी है सफलता बनी है स्वरूप प्राप्ति हो जाण करके जिहड़ा साडा दिल है मन है यह रस विच रहिंदा है स्वरूप दे अधिक आनंद नूं हिरदे विच।

0: बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी। बाणी में ते लिखिया बचन है कि जरा चुगली करता है ते निंदा करता और रुड़ के मरता रुड़ के ओदी पछाण नहीं लेंदा कोई पानी नहीं पाउंदा ओदी क्रिया नहीं कोई सामदा सब गंद ओदा मंजे दे उत्ते पैंदा करन वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी। बाणी में ते लिखिया बचन है कि जरा चुगली करता है ते निंदा करता और रुड़ के मरता रुड़ के ओदी पछाण नहीं लेंदा कोई पानी नहीं पाउंदा ओदी क्रिया नहीं कोई सामदा सब गंद ओदा मंजे दे उत्ते पैंदा। बाणी दे विच लिखिया चुगल निंदक भुखे रुड़ हुए चुगल निंदक भुखे रुड़ ना हाथ ना कथाऊ पाए हाथ ही नहीं कितने पैदा चुगली करने वाले का ते निंदा करने वाले ए रसना नु मुखातिब होए बाबा अमरदास जी कहते ए रसना तू अनरस राज रही जिन्ना चिर मर्जी गल्लां करदा जिन्ने मर्जी लैक्चर जान ला जिन्निया मर्जी कहानियां जान ला जिन्ने मर्जी रस पीला जिन्ने मर्जी फ्रूट खाला प्यास ना जाए होरत किते जिचर हर रस पल्ले ना पाए तेरी प्यास नहीं बुझनी जिन्ना चिर नहीं जपेगी वाहे गुरु
1: वाहे गुरु
0: वाहे गुरु
1: वाहे गुरु
0: वाहे गुरु।

हर जसरे मन गायल जो संगी है तेरो अवसर बीतो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज स्यो हद ने लगायो काल फास जब कर करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे काज जगारियो पाप करत सुख ज्यो नहीं ने कर बनवारियो जे बिद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई जे बिद गुर उपदेसे ध्यान दियो जे बिद गुर उपदेसया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन सको।

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नू, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है, धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उस तरह वर्त रखदे आ, उस तरह श्राद्ध करवाउने आ, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जेड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर

0: अपने अंदर झाती मारो, धन गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी अनुसार जीवन ढालो, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो। ये हर हर कथा निराली कथा है, प्यारी कथा है, जिधर गुरु तोरदा है उधर चलो। सो सिख सका बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, हुक्म विच आवे गुरु दे ते, अपन भाणे जो चले भाई, ओ विछड़ चोटा खाए, विछड़ के चोटा। आ सारा संसार अज क्यों दुखी, सारे संसार दे दुखां दा कारण कही है इना पंजवें बापू दा वचन नहीं मनिया। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, इना पंजवें बापू दा वचन नहीं सुनिया। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म वजोग। इना पंजवें बापू दा वचन नहीं सुनिया, इना साहिब गुरु नानक पातशाह दा वचन नहीं सुनिया। जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। मेरे साहब जी कहिंदे ने उन्हां दी हालत इस तरह दी हो जांदी जी, कोई कोड़े तरसदे ने, जिन्हां नूं कुष्ठ रोग लग गया है, जिन्हां दे लक विच कैंसर दे फोड़े हो गए ने, जिन्हां नूं कीड़े पै गए ने, किस तरह ते रात दिन हाए हाए करदे ने। हर हालत भावे वह सुंदर कपड़िया बैठा है, भावे 500 गज के मकान बैठा है, भावे वड्डिया गड्डा बैठा है, जेड़ा परमेश्वर नूं भुल गया उहदे मूहों वाहे गुरु नहीं निकलता, उहदे मूहों हाए हाए निकलता है। क्योंकि पापी कर्म कमावदे करदे इत्थे दे तुहाडे रवाज जिहा ही बनिया। आखो सतनाम श्री की बनिया, जिन्हों मिलदे हो की कहिंदे हो, कमाल दी गल आ। हाए उदो मूहों निकलदी आ जदों बड़ी तंगी होवे, पीड़ होवे। जे मेरी जा चेतन सारे अमरीका वाले पीड़ी होई जांदी एक दूसरे नूं। आ थोड़े दिन होए उत्थे किसे झील दे उत्ते सैर करन दे नाल गुरमुख प्यारे सी बच्चे, ते उहने अगवा कहा हाए, ते मेरे नाल दा वी कहिंदा हाए, ते मैं कहा गेम कहा तू ना कहिनू हाए, ते कहिंदा मैं की कहिंदा। मैं कहा जदों उह कहिंदी सी अगो बच्ची तुरी आउंदी अंग्रेज, उहने जदों आख्या हाए, ते मैं कहा तू अगो कहिनू वाहेगुरु, उहदे कन्नी पै जांदा ना गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर पै जांदा ना कन्न च वाहेगुरु गुरु परमेश्वर का नाम। जे उन्हें आख्या सी हाए ते तू क्यों हाए आख्या, तू अगो कहना वाहेगुरु, ते जा कला कह देना वाहे वाहे भी वाहे भी वाहे वाहे वाहे भी शब्द बाणी दे विच आया। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी आपां नूं बख्शे भरे बचना विच कहिंदे ने, देख फरीदा जेथिया दाड़ी होई पूर, अगो नेड़ा आया पिछा रहा दूर। हां जी,
1: देख फरीदा जेथिया सक्कर होई विस,
0: देख फरीदा आ की बन गया। कल तक जेड़े मिठे भोग लगते सी, कल तक जेड़िया चीजा चंगिया लगदिया सी, अज यहर वर्गिया क्यों लगदिया ने। आखो सतनाम श्री। जवानी वेले तो बड़ा टीवी ला ला के कहिंदा सी मैनूं चंगा लगदा, हुण बुढ़ा कहिंदा मेरे कन्ना च आवाज वजदी लाओ ना। जवानी वेले ते हर चीज बड़िया भर भर के ढिड खांदा सी, हुण कहिंदा ना मेरे कोल रोटी खांदी जांदी, ना हुण मिठा खादा जांदा है, ना कोई होर चीजा। जिन्ने दुनिया दे भोग सी कल शक्कर वांग मिठे लगदे सी, मगर बाबा फरीद कहिंदा वेख की हो गया, शक्कर होई विस, शक्कर होई ओ जिहड़ी शक्कर सी ना मिठी, ओ यहर वर्गी होई विस वर्गी बन गई। हुण कहिंदा मेरे वल किसे नूं वेखण नूं दिल नहीं करदा, मेरा किसे वल वेखण नूं दिल लगदा, किसे दी गल सुणन नूं दिल नहीं करदा। उदों एवें कार चुक के तुर पैंदा सी, चलो शहर वेख के आवां, हुण नहीं जांदा। इह जिहड़ी हुण हालत हो गई आ, जिहड़े मिठे भोग सी उह यहर वर्गे बण गए, मगर इह अपने मन दी मैं अवस्था किन्नूं दसां, सुणो जी।
1: साईं बाजों अपने वेदन कहिए किस,
0: उस साईं उस वाहिगुरु परमेश्वर तो बिना इह हुण हालत मैं किन्नूं दसां। बाबा फरीद जी कहिंदे ने ओ जिहड़ा सब कुछ चंगा लगदा सी ना, चिलमल बसियार दुनिया फानी, इन्हां लत्तां दे नाल किते सैरां करदा, कुछ खांदा कुछ पींदा, ओ सब कुछ हुण यहर वर्गा पासण लग पिया। मगर ए जिहड़ी तब्दीली मेरे जीवन च बजुर्ग हुण अके आई आ, हुण कुछ भी चंगा नहीं लगदा, ए मैं वेदन हुण किन्नू दसां। साईं बाजो अपने, बोलो साईं हुण वेदन कहिए किन्नू आखां, ए किन्नू दसां, ए कि मेरी यह हालत होगी, कोई सुनदा है मेरी? बुढ़िया दी ते कोई भी नहीं सुनदा, पानी मंगदे नवा किन्नियां चुप कर रौला ना पा। तिया पुत परिवार दे सारे जी जवाब दे जांदे ने, कह ते कबीर कोई नहीं तेरा तब तेरी ओक, कोई पानी हो ना पावे, पढ़दे हो ना, तब तेरी ओक कोई पानी हो ना पावे। ओक कहिंदे जे बुक नूं, कहिंदे एक दिन समा इहो जिहा आ जाणा जिन्हां लई बहु परपंच कर, ਪਰ ਧਨ ਲਿਆ ਵੇ ਪਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਆਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾ ਲਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲੁੱਟਾਵੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਸਤਰੀ ਲੋੜੇ ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ ਇਸਤਰੀ ਲੋੜੇ ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ ਬੋਲੋ ਇਸਤਰੀ ਲੋੜੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਇਸਤਰੀ ਲੋੜੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲੋੜੇ ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾ

तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किश दीजे। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा,

बोले तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने मैं मूर्ख किश दीजे प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

0: सिखी सिदक ना जाए।
1: फिर लो दे फुहारे छुट्टे, प्यो दी जिंद निकलदी निकलदी पुत दे मुंह वल वेख रही आ, ते प्यो पुत वल वेख के कह रहा धन सिखी, ते पुत प्यो नू वेख के कह रहा धन सिखी। मेरे पिता जी तुसी धन जे सिखी च पूरे उतरे हो बजुर्ग होके भी, ते बजुर्ग प्यो कह रहा वा मेरे पुत्रा तू नौजवान होके ये चरखड़ी दे दंदिया ते बह के सिखी न पाई आ तेरी धन सिखी। कदी इना ध्यान दियो एकाग्रता, जो सिजो कंबली अल्लाह वरसे मैं हूं। अगे जी
0: जाए मिला तिना सजना टुटो नाही ने हो,
1: जावां उस मालक दे चरणा विच जावां दर्शन ददार करा अपने मालक नूं मिला गलवकड़ियां पावां, जेड़ी मेरी भोखिया भवरे दी भोखिया वाशना भवरे दी भोखी आ वाशना, मगर असी कितना दे भवरे बन गए, असी फुलां दे प्रेमी बन गए वाशना दे नहीं। आखो सतनाम श्री, फर्क समझ लिया, फर्क समझ लिया कि नहीं। आपा घर घर दे विच गुलदस्ते एडे एडे फुलां दे लिया के रखे ने, ते किसे भौरे नूं आखो, भौरे नूं आखो किधर चलिया, कहिंदा मैं फुलां दी फुलवाड़ी चलिया, कहिंदा की लैण, कहिंदा मैनूं फुलां नाल प्यार आ फुलां दी सुगंधी नाल प्यार आ, ते तुसीं आखो आ जा कोई गल नहीं अज मेरे घर चल, मेरे घर भी बड़े फुल ने, ध्यान दिओ मेरे घर भी बड़े फुल ने, ते चार सवेरे घुम के चल जूगा, उन्हें उन्हां फुलां नूं वेखना ही नहीं, क्योंकि उन्हूं पुछया मुन लगे नूं मुड़ चलिया वा, उथे कोई अलोकार गुलाब दे फुल नहीं आवे, किड़े किड़े सुंदर गुलाब दे फुल ने। उन्हें कहा सजना ए फुल बनौटी ने, इन्हां विच कुछ नहीं, जिहड़ियां साडे घरां विच भी बाबियां दियां फोटो लगियां ने ना, करमा वाला गुरु दा सिख इन्हां बाबियां वल नहीं वेंदा, क्योंकि उन्हां दे विच सुगंधी नहीं, सुगंधी आ ते केवल जागदे जोगदे जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। एक बाणी विच गुरु नानक साहिब ने वचन कीता है रसिया होवे मुश्क का, बोलो रसिया होवे तब फूल पछाणे, जे कोई जीव आत्मा प्रेमी होवे वाशना दी ते ओ आखूगी ये गुट्टे दा फुल आ, ये चमेली दा फुल आ, ये फलाने दा फुल आ, ते जे वाशना दा ना प्रेमी होया केवल फुल दा होया ते आखू ये फुल ने। इस करके गुरु दे प्यारे वाशना नाल प्रेम करना है, ओ वाशना गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों मिलदी आ, केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों मिलदी आ। दुनिया ते कोई पीर कोई पकंबर कोई देवता जेदी पूजा करन आप जी नू नहीं किया, इको ही गल आप जी नू गुड़ती दे विच पाई, गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, आख दियो एक बार गुरा एक दे बजाई, जिया का एक दाता सो मैं। उस गुरु दे लड़ लगो जेड़ा सारे संसार दा प्यो आ सारे संसार दा पिता है। मेरी हाथ जोड़ के आप जी सारे नूं बेनती दे, अगले एतवार इस वेले नूं अमृत दा बाटा तैयार होना है, अमृत वेले 7 बजे दा टाइम रख देना है, क्योंकि दीवान लगन तो पहलों पहलों अमृत दा बाटा तैयार हो जाए। मेरी हाथ जोड़ के बच्चियां वीरां गुरसिखां सारिया के चरणों में बेनती है, गुरसिख प्यारियो ये फर्ज समझो, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे अवरै नाम। आप अमृत छकिया जे ते दसो संसार दे लोकां नूं इह अमृत बड़ा मिठा है, दसो संसार दे लोकां नूं कि अमृतधारी सिख दा जीवन होवे जन्म सुहेला, असीं सुखी हां। लोकां नूं दसो कि असीं अमृत जिदन दा छकिया वा, साडे घर विचों 100 वैवता निकल गईयां, साडे घरों विचों बीमारियां निकल गईयां, साडे घरां विचों परेशानियां निकल गईयां। संसार दे लोकां नूं प्रेरो, होर नेमियां प्रेमियां नूं प्रेरो, मेरे सतगुरु कृपा करन कलगियां वाले पातशाह कि उस दिन आपां वड्डी गिणती विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे धीआं पुत बणीए, ते मेरे सतगुरु दीआं असीसां लईए, प्रचार करन दा कथा करन दा। संत बाबा हरदेव सिंह लूलो कलां वाले एक दिन बचन किसे दी कैसट विच मैं सुन रहा सां, ओह कहिंदा कणक ते बड़ी बीज दी, उग भी बड़ी पैंदी, वड भी बड़ी लईदी, मगर पता ते उदन लगना जिदन बोल किन्ना क लगदा है। कथा तां सुन लई, कीर्तन दरबार ते करा लै, पता उदन लगना गुरमुखो प्यारियो जिदन ए पता लगे कि 15 दिनां दी कथा ते कीर्तन दे विचों किन्ने गुरु दे सिख सजे ने। इस करके आप आयो ते होरनां नूं प्रेरियो, संदेशा दियो कि अमर शकीए गुरु वाले बणीए, भुलाना च उतारनिया वड्डी गिणती विच आउणा। वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी जे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगण यारी कंत न पावे बोलो अवगण यारी सारे बोलो जरा अवगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणा दियां मालक ने ते आपा इस करके गुरमुख प्यारो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपा नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वा मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वो

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ, सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभ आ, सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उहनूं महारनी पका ली वी तोतिया पोस्त नहीं खाणा। ध्यान दिओ, तोतिया पोस्त नहीं खाणा। एक दिन उह तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिआं नूं महारनी पकाती, तोतिया पोस्त नहीं खाणा। ते सारे ही तोते उड़दे उड़दे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए ते सारिआं ने चुंझां भरियां, पोस्त खाई जांदे ने ते जेदी चुंज खाली होई जांदी उह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है। नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते न्याणिआं नाल बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी, इस तरह दा नहीं। बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा, मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच इह छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ। घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चिआं नूं सिखाओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तों मुबारक बचन सरवण करिए जी।

0: कुदरत कवन हमारी ज्यों बलावे त्यों बोला स्वामी। कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनता दे योग जे जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन बचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है सतगुर दर्शन धन है
1: सतगुर दर्शन धन है सतगुर